0: क्यूट स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी।
1: तो तुम्हें मेरी स्माइल क्यूट लगती है?